चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है कट कट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बद

केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई पुपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

0: FM बेमिसाल अंदाज विद परवीन आदम।
1: जुमे का दिन आ गया है, सामिन फजा में नगमे गूंजेंगे जी, माजी के दौर के जादू भरे गीत होंगे और आपके लिए आवाजें भी आएंगी। कहां से 1974 की एक फिल्म, उनके जो उस फिल्म के अदाकार थे उनकी आवाजें आपको सुनाएंगे। आप मुझे नाम दे देंगे 07011106106 पर। फिल्म का एक गाना है, आमतौर पे मैं फिल्म के गाने आपको नहीं सुनाती ताकि मुश्किल से मुश्किल हो जाए आपके लिए ये फीचर। खैर आज एक गाना होगा, वो मैं आपको सुना दूंगी, बस आप इंतजार कीजिएगा हमारे खास फीचर्स का। और क्या हो रहा है, जी हाँ, शोख कलियों ने क्या किया है।

और सबसे पहले मैसेज जो आया है मुनीर आपका है आपने कहा है कि बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए क्या थे ये दो समस्याएं थी बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता क्या बात है वैसे मुनीर की कंट्रीब्यूशन वंडरफुल थैंक यू रूपल भी आ चुकी हैं बर्ड्स चर्पिंग फ्लावर्स ब्लूमिंग बीज डूइंग देयर जॉब एवरीवन इज डूइंग समथिंग टू कीप गोइंग वन लाइन चलते चलते मेरे गीत याद रखना ओके ठीक है रूपल ये याद रखना है कि आपके लिए ये गाना भी सुनाना है ओके रूपल वो हो जाएगा काम आपके लिए और वीडियोस आप मुझे अगर भेजती हैं तो मुझे कुछ उसका फ़ायदा नहीं हो सकता प्यार अली भाटिया आपने सबको गुड मॉर्निंग कहा बीइंग ऑनेस्ट मे नॉट गेट यू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट इट ऑलवेज गेट्स यू द राइट वंस ऑनेस्ट ईमानदारी के पर चलेंगे सामिन तो आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपके साथ रहेंगे वफादारी करेंगे ठीक है ओके जबीन हिरानी गुड मॉर्निंग परवीन जी टू ऑल द लिसनर्स कहती हैं कि ना एम्ब्रेस द डे विद अ ग्रेटफुल हार्ट एंड वॉच एस ब्लेसिंग्स अनफोल्ड बिफोर यू कहते हैं खुदा आपको नेमतें आप पर बरसाता जाएगा सिर्फ ये है कि आपने शुक्र करना है कि खुदा ने एक नया दिन दिया है क्या बात है बहुत अच्छे और आपके बाद कौन आई हैं शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टच कोर ऑफ अ पाइनएप्पल टफ कोर ऑफ अ पाइनएप्पल विच इज यूजुअली डिस्कार्डेड समझो पाइनएप्पल होता है अनानास उसका जो अंदर का स्टेम सा होता है बड़ा सख्त होता है लोग उसको फेंक देते इट इज सेड टू कंटेन अप टू 500% मोर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स Then the sweet flesh of the fruit. कहते हैं सब कुछ तो उसके कोर में है वो जो सख्त है हिस्सा समझ लेकिन वो खाया जा सकता है इतना भी मुश्किल नहीं है कहते हैं उसमें ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स हैं बहुत अच्छे और कितने 500 गुना ज़्यादा और हम उसे फेंक देते हैं शमीम थैंक यू आज के बाद कोई अनानास जब काटेगा तो वो ये नहीं फेंकेगा ओके हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है

0: और आपकी बातें पहले सुनते हैं हुस्ना मोहम्मद
1: कौन परिन जी आप ठीक हो तमाम मुसलमानों को साथ में आपको दिल हज का पहला जुमा मुबारक परिन जी और परिन जी आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है जन्मदिन है तो प्लीज आप कोई भी अच्छा सा गाना उनके नाम का कर दो प्लीज मैं आपसे मांग रही हूँ अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज
0: हुस्ना मोहम्मद बहुत बहुत सालगिरह मुबारक आपके शोहर को पैगाम दे दीजिएगा ईस्ट एफएम की पूरी टीम की जानिब से और जी हाँ आगे मैं देखती हूँ कौन सा गाना शायद मुझे एक्चुअली उनकी पसंद कभी नहीं पता पर फिर भी और हैप्पी फ्राइडे अच्छा सना काना और साथ आई हैं सलमा
2: सो बार चमन महका सो बार बहार आई दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई बनी शुक्रिया सुबह का प्यार सलाम सौमा आमद किसुमु
0: बहारें आती रहें दिल था परेशान तन्हा था बहुत अच्छी सलमा अहमद और हैप्पी Friday and long weekend. Happy Madaraka Day and all the Bemisal listeners. Ranjan Vinod. Madaraka Day. Achha. Woh mere haale 31 ko hai. Okay. And ab yahan par hain. Hi Parvinji. Good morning and Juma Mubarak to all the listeners. And a wonderful, have a wonderful day. Kokila from UK. Bahut achhi hamari listener hai. नहीं अच्छी हैं लेकिन यहाँ आई थी वो उन्होंने मुलाकात नहीं की ओके अब यहाँ पर परवीन जी विशिंग यू एंड बेमिसाल अंदाज या अल्लाह मेक दम मेक मी अमंग दोज हु आर ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स पेशेंट इन योर टेस्ट सिंसियर इन योर वर्शिप एंड फ्रॉम अपॉन योर पाथ फर्म अपॉन योर पाथ गाइड मी फॉरगिव मी एंड एक्सेप्ट मी आमीन अमीर अली राना बहुत अच्छी दुआएं थी आपकी हाय परवीन जी आज आपने इतने अच्छे गाने से शुरुआत की है शुक्रिया शैलेश एंड शीला शाह हमारे दो बहुत ही अच्छे लिसनर्स हमेशा एंजॉय करते हैं सिलेक्शन को शीला बहुत शुक्रिया आपका और कहते हैं व्हाट डिड यू मेंशन अबाउट कटिंग अ पाइनएप्पल I am on one right. I missed the beginning of what you said. Pata hai kya? Ye hai Khadija. Khadija, baat ye hai ki Shamim from South Africa sent a message ki hum log jo pineapple ka andar ka wo stem sa hota hai, sakht jo hissa hai, jisse wo khada rehta hai, wo kehte hain ki phenk dete hain. और फ्रूट उसका आसपास का जो नर्म है वो खा लेते हैं लेकिन जो सख्त इसका हिस्सा है ना उसमें 500 गुना ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते आपके जिस्म में और हम उसे फेंक देते हैं वो सख्त वाला पहले खाएं फिर नर्म खाएं खतीजा ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रसिला परवीन जी Rima Lagu passed away 2017 at 59 due to cardiac arrest. She was actively filming for television series Namak Haram at the time of her death. Ji, Rima Lagu, bahut achhi actress thi. She refined the image of the Bollywood mother in the 90s, moving away from the suffering woman. Actually, she did not do it. वो बात यह है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बदल दी थी छवि माँ की समय पहले ज़माने में माँ सारी फिल्म में रोती थी बड़ी बेबस और लाचार होती थी फिर भारत के प्रोड्यूसर्स ने ऐसा किया कि उन्होंने बंद कर दिए ऐसे कैरेक्टर्स बनाने जिसमें वो औरत इतनी लाचार है उसकी कोई आज़ादी नहीं है उसके पास कोई हकूक नहीं है तो अब वो सख्त ताकतवर तालीम याफ्ता औरत को दिखाते हैं एज अ मदर बहुत अच्छे रसीला थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन और प्यार अली भाटिया
3: प्रवीण जी गलियों ने घूंघट खोले ये गाना फिल्म दिल ने फिर याद किया के है 1966 की मूवी है जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और जिसको जी एस रावल ने लिखा है और जिसकी धुन सोनी ओमिक ने बनाई है गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया.
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
5: Kenya's premier Asian mix.
6: East FM.
5: Just celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
6: East FM.
5: Kenya's premier
6: Asian mix.
7: It's 10:23.
8: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quick Mart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
9: Priority Banking from Standard Chartered not only manages your wealth and legacy, Priority Banking from Standard Chartered connects you to investment opportunities across the world. Real global expertise and a wide range of investment solutions right here in Kenya. Now's your time for wealth. Join Priority Banking today and enjoy real returns and real peace of mind. Visit your nearest branch or speak to your relationship manager.
10: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
11: Pavitra Purushottam Mas Daramyan, Pushti Margiya Vaishnav Sangh Nairobi Tarafthi, Shri Vallabh Dham Haveli Khate, Dainik Darshan Mate, Sarva Shrotao Ane Parivarone, Hardik Amantran, Mangla Darshan, Savare Sava Satvage, Shringar Darshan, Savare Daswage, Rajbhog Darshan, Savare Agyarvage, Uttapan Darshan, Sanje Sada Charvage, Sandhya Darshan, Sanje Sava Pachvage, શયન દર્શન સાંજે 6:30 વાગે. આ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસમાં દિવ્ય આશીર્વાદ અને કૃપાનો લાભ લેવા સહપરિવાર જોડાવા વિનંતી.
5: બેક ટુ કેન્યાઝ પ્રીમિયર એશિયન મિક્સ ઈસ્ટ એફએમ.

0: और जिसने संगीत से सजाया गाने को कृष्ण सर्वे फ्रॉम लंदन जी कृष्ण
1: जी गुड मॉर्निंग टू ऑल योर लिसनर्स
0: गुड मॉर्निंग जी
1: ये गाना कश्मीर की कली का है
0: जी जी
1: इनमें थोड़ा सा ना ओपिनियन के साथ शमी कपूर का इख्तलाफ हो गया
0: अच्छा
1: ये जो चल रहा है ना भी लास्ट क्लास ये 12-15 दफा रिपीट करना था
0: ओह ओह अच्छा
1: तो ओपिनियन नहीं करना चाहते थे बोला गाना खत्म हो गया है जरूरत हाँ, नहीं है इसकी
0: हाँ, हाँ.
1: तो उसने सजेस्ट किया कि मोहम्मद रफी साहब को कोई तकलीफ नहीं है ये रिपीट करने में 10-12 दफा
0: हाँ.
1: आपको क्या तकलीफ है
0: हाँ.
1: तो उन्होंने फिर ये रिपीट कराया ये कंटिन्यू ऐड किया 10-12 दफा तारीफ करके
0: हाँ, मैं भी सोच रही थी फजूल है इतनी बार करवाना
1: लगता है फजूल हाँ? लेकिन उसको पाली में गिरना होता है प्रवीण जी
0: अच्छा अच्छा जिसने
1: तो उसके लिए उसने डिसाइड किया कि इसको रिपीट होना चाहिए 10 दफा कि मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ और पानी में गिर लेक में गिर जाऊंगा डल लेक में
0: अच्छा डल लेक ये भी थी
1: इसलिए डल लेक में शूटिंग हुई थी इसकी
0: बहुत अच्छे अच्छी इन्फॉर्मेशन है कृष्ण
1: बोलते हैं मोहम्मद रफी को कोई तकलीफ नहीं हाँ। है 10 दफा रिपीट करने का हाँ। आपको क्या तकलीफ है
0: हाँ और मोहम्मद रफी बेचारे जो भी कोई कुछ कहता था ना वो कभी झगड़ा नहीं करते कभी इख्तलाफ नहीं करते थे थैंक यू
1: जी बिल्कुल अच्छा था
0: अच्छा नहीं
1: चाहिए ओपिनियन ने भी फिर बाद में बहुत अप्रिशिएट किया कि शमी कपूर को गाने के बारे में बहुत नॉलेज था ये
0: राइट राइट ओके कृष्ण अच्छा समझ बार बार कहते जाओ जिसने तुम्हें बनाया बनाया बनाया ओके कृष्ण सर्वे के हम बड़े आभारी हैं और समझ दिनेश और शोभना ने भी भेजा था अपना मैसेज और कहा

0: बेमिसाल अंदाज विद परवीन आदम।
1: और साहब पहले एक आवाज सुनते हैं फिर आपको जवाब भी दे दूं। और देखिए
2: परवीन जी, दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, ये गाना फिल्म इंस्पेक्टर का है, 1956 की मूवी है, जिसको हेमंत कुमार ने गाया है और जिसको SH बिहारी ने लिखा है और जिसकी धुन भी हेमंत कुमार ने बनाई है। ये ब्यूटीफुल गाना अशोक कुमार पे फिल्माया गया है, उसके साथ गीता बाली काम कर रही है। ये गाना बहुत अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
1: प्यार अली भाटिया, बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। मंजुला विश्वकर्मा ने सही आंसर भी दिया था।
3: सबको नमस्कार परवीन जी। कौन कहता है खामोशियां खामोश होती हैं? कौन कहता है खामोशियां खामोश होती हैं? कभी खामोशियों को खामोशी से सुनो। खामोशियां वो कह देती हैं जिनकी लफ्जों को तलाश होती है।

0: मुबारक।
1: क्या बात है मंजुला विश्वकर्मा इन इंडिया। तो समय ने आंसर दिया था मंजुला विश्वकर्मा ने भी करेक्ट, रसीला शाह ने बिल्कुल सही, सुरेश शिकोत्रा बर्गन में है और नॉर्वे में बहुत कम टेक्स्ट करते हैं। आज उन्होंने सही जवाब दिया है, सुरेश शिकोत्रा, थैंक यू। अमीर अली राणा ने कहा, आपको पता है कि ये जो अनानास है ये सबसे अच्छा टेंडराइजर है, सम फिर आपको कच्ची पोपो ढूंढने की क्या ज़रूरत है, आप गोश्त को टेंडराइज करना चाहते हैं तो पाइनएप्पल से करें, ये कहा है अमीर अली राणा ने। मुनीर करेक्ट आंसर, फूकी मलिक, थैंक यू। सम करेक्ट आंसर पाकिस्तान था, तो ये जो है ना बिशप सैमसन शुकरदीन वो पाकिस्तान के हैं, ये वहाँ की एक बिशप्स कॉन्फ्रेंस है ऑफ पाकिस्तान, उसके अध्यक्ष हैं। तो समय अगर आ गए पोप लियो पाकिस्तान में तो फिर मुझे नहीं पता, वो वैसे जो कहते हैं वो बोलते हैं, डरते नहीं हैं, उनको खौफ नहीं है, अगर वो आ गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा पाया जाएगा उनकी बातों पर, क्योंकि वो सच बोलेंगे।

0: ये पता तो चलाएं क्या हुआ इस गाने के दौरान। जी अश्विन, हिट बना?
1: हिट बना बहुत से, मन्ना डे का वन ऑफ द बेस्ट है प्रवीण जी।
0: बिल्कुल, मन्ना डे का जी
1: या फिल्म थी प्रवीण जी, आपको याद है जंजीर?
0: जंजीर, ये अमिताभ बच्चन थे
1: या अमिताभ की ये फिल्म थी? जी, फ्रॉम देयर ही नेवर लुक बैक प्रवीण जी।
0: क्या बात,
1: उनको जो स्टारडम मिला
0: वो इस पॉइंट से,
1: इस पॉइंट से मिला
0: जी।
1: पहले उन्हें आई थिंक 5-6 फिल्म बनाई थी, लेकिन हाँ। कुछ चला नहीं, कुछ ऐसे,
0: लेकिन मुझे याद है वो फिल्में
1: या लेकिन इस फिल्म में जो काम किया ही वाज अप्रिशिएटेड एंड देन ही बिकम सुपर, क्या भी उसको
0: सुपर
1: क्या
0: से भी ऊपर हो गए। माशाल्लाह आज भी इतना even, बड़ा नाम,
1: इवन टुडे ही इज सो मच रिस्पेक्टेड एंड
0: राइट बिल्कुल बिल्कुल
1: यस। तो ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था,
0: स्टार्टिंग
1: जिसमें स्क्रीन पे प्रवीण जी प्राण गा रहे हैं ये गाना
0: जी।
1: या प्राण वाज अ फ्रेंड ऑफ हिज एंड इट वाज अ पठान, पठान का उनके उनका पार्ट लिया था।
0: ओके,
1: और साथ में थी ये उनकी फ्यूचर वाइफ
0: जया
1: बाबा रिजवी। यस एंड देन अजीत इफ यू रिमेम्बर प्रणजी, वो भी थे यू नो एज अ विलन।
0: अच्छा,
1: या
0: ही डिड दोस कैरेक्टर्स वेरी वेल।
1: या भी चेंज किया एंड देन ही स्टार्टेड कमिंग एज अ विलन
0: राइट।
1: फिल्म हिट हुई प्रणजी, म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का और गाने लिखे थे सभी गुलशन बावरा ने।
0: अच्छा, गुलशन बावरा,
1: यस ही वाज वन ऑफ इन दोस डेज, ही वाज वन ऑफ द पॉपुलर पोएट।
0: क्या बात है, बहुत ही खूब गुलशन बावरा, थैंक यू। और समिन, मैंने कहना था कि हुस्ना मोहम्मद ने कहा है कि उनके शौहर की बर्थडे है, तो कोई अप्रोप्रिएट, मैं उन्हीं की जानिब से एक गाना सुनाती हूँ उनके, हैप्पी बर्थडे टू हर हस्बैंड।

0: तुमको हमारी उम्र लग जाए। अब देखें, यासर कहते हैं कि आपको पता है कि सैमसन शुकरदीन वॉज बॉर्न इन 61 29th of January, ही इज द बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ हैदराबाद। सो पाकिस्तान में जो हैदराबाद है, द डायसिस ऑफ हैदराबाद, पॉपुलेशन कितनी है, आबादी इस हैदराबाद में 2.43 मिलियन, 2.43 मिलियन, of which 50,000 are Catholics. It is served by 15 parishes, 30 priests and 89 nuns. Nuns bhi hain, 90, kareeb 90 nuns hain. Ye bahut achhi information hai, Yasir, thank you. In 18th century Europe, pineapples were so rare and expensive that wealthy people would rent them for the evening just to carry them around at parties as a symbol of extreme wealth. कहते अनानास प्रतीक था दौलत का, तो कहते लोग एक दूसरे को किराए पे देते थे अनानास। वाह वाह, ऐसी इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी लगती है हमें, अनयूजुअल, यूनिक।
1: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार। कहंदे मुस्कुराउंदा उही है, मुस्कुराउंदा उही है जिसनू पता है कि कोई भी समस्या, जिसनू पता है कि कोई भी समस्या रोण नाल हल नहीं हुंदी, रोण नाल हल नहीं हुंदी। थैंक यू जी,
0: बहुत अच्छे। सलीम मेहर,
2: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। Be the type of energy that no matter where you go, you always add value to the spaces and lives around you, just like you, Parvinji. Good morning and Jumma Mubarak to you, Parvinji, and all your lovely listeners.
0: सलीम मेहर, मैंने तो ये भी सुना है कि आपने जितना काम किया है शबीर अहमद के साथ मिलकर वहाँ ब्रिटिश एशियाइयों के लिए, बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है, बहुत खूब। और समिन, अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद मैंने एक्चुअली तो पूछना था, मेरी वो वॉइस क्लिप दूर होती जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, समिन ये कहाँ बनी है और क्यों, कॉकरोच जनता पार्टी।
3: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix. Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: It's 11:22.
5: Hey guys, what happened here?
6: She drew it. No, he told me. Uh-huh. No, you started it. No, it was you.
5: Okay, wait here. I'll show you.
7: It's not easy to tell such stories apart, but lucky for you, it's super easy to clean out drawings from walls painted with Duracoat Soft Satin Emulsion and Duracoat Vinyl Silk Emulsion. Durable, easy to clean, and with a long-lasting fresh appearance. Duracoat Soft Satin and Duracoat Vinyl Silk are the best for your interior walls, especially when you have little artist come teachers in the house. Buy Duracoat Soft Satin and Duracoat Vinyl Silk paints today. We know paint. Duracoat. Ask the experts.
3: More of Kenya's premier Asian mix. East FM. East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: और पारो चोड़ा कहती है कब से आपकी लाइन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम, बहुत खूब पारो चोड़ा, आई एम ग्लैड आप एक एक गाने को एंजॉय कर रही हैं, आनंद ले रही हैं। और हमने चलना है पहले अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
1: चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। मैं नीम शब आसमान की उसद को देखता था, जमीन पे वो हुस्नेजार उतरा तो मैंने देखा। गली के बाहर तमाम मंजर बदल गए थे, जो साया कुए यार उतरा तो मैंने देखा। हमारे मैं वो चेहरा कुछ और लग रहा था, दामे सहर जब खुमार उतरा तो मैंने देखा। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मैं एक और दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। थैंक यू परवीन जी, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
0: बहुत अच्छे, कमाल है। और मिसेस धंजल, आपने कहा है गुड मॉर्निंग, दिस सॉन्ग इज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स। मिसेस धंजल बहुत अच्छे, आपने डेडिकेट किया है एक गाना सभी के लिए। और
2: मैं परवीन जी
0: और हुस्ना मोहम्मद बहुत खुश हैं आज, वैसे भी उनके हस्बैंड की बर्थडे, और हमने एक गाना जो सुनाया है सना काना एंजॉइंग द लव, एंजॉय द लवली वीकेंड। ओके लखबीर, ओ हो लखबीर, अच्छा कहते हैं अ टूरिस्ट विजिटेड अ सूफी, ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दैट द सूफीज होम वॉज सिंपल रूम, द ओनली फर्नीचर इन इट वॉज अ मैट एंड अ केरोसिन लैम्प। द टूरिस्ट, सूफी वेयर इज योर फर्नीचर, सूफी वेयर इज योर्स, टूरिस्ट माइन but I am only a visitor here, Sufi, so am I. वो तो विजिटर था ना वहां उस जगह में, लेकिन सूफी विजिटर है इस जहां में। बहुत अच्छे, बहुत खूब लखबीर, that was really great. समझ, जो सूफी लोग होते हैं ना बहुत ही पहुंचे हुए होते हैं। बीना पटेल, आपने कहा है या बिना पटेल कॉकरोच पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो इंडिया में बनी है, कैसे कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया में? सोनल, दिनेश,
3: प्रवीण जी कैसे हो आप? ये कॉकरोच जनता पार्टी मेरे ख्याल से इंडिया में बनी हुई है, कि जो नाम जनता का है, इसलिए वो वॉइस जो लेजी और अनएम्प्लॉयड है उसका वॉइस करने के लिए बनी है, दिनेश शाह।
0: हाँ दिनेश, ये आपने सही कहा है, लेकिन ये एक तरह से मजाक किया है जवानों ने, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ने शायद कहा कि ये जवान काम करते नहीं हैं, घूमते फिरते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं कॉकरोचेस की तरह। उन्होंने फिर उनको दिखा, जवाब देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। इतनी कामयाब हुई है सोशल मीडिया पर कि अगर असल में ही बन जाए ना, हो सकता है। अब जबीन हिरानी, कॉकरोच जनता पार्टी इज फाउंडेड इन इंडिया, एक्चुअली ये इस तंज है, सैटायर है, एक्चुअल नहीं है पार्टी। इट डज नॉट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक फिजिकल, नो ये यंग युवाओं की पार्टी होगी अगर बनती है, लेकिन ये अभी बनी नहीं है। जबीन हिरानी बहुत शुक्रिया। यास्मिन और मेजर वांजा, थैंक यू। और समय थोड़ी देर में पहला क्लिप आ जाएगा आपके लिए एक गाने के बाद।

0: आशा भोसले जैसी गायकी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अमीर अली राणा बन गए हैं पहले कॉलर टू गिव मी द आंसर। ये दो आवाज़ें किन की थी जो कहते हैं, बताइए। मैंने एक लड़की को ना ये नंबर दिया हुआ था मेज़ का, वो यहाँ आई है। कैसी लड़की, सब कुछ उसके बारे में जानकर कहते हैं कि ये थी। हाँ हाँ आई थी, नहीं और आएगी भी नहीं, बेचारा हीरो। अच्छा, हीरो दो थे इसमें मुझे लगता है। खैर, अमीर अली राणा दोनों करेक्ट, रसीला शाह बिल्कुल करेक्ट, सही, बीना पटेल सही, और आपने तो उनका दूसरा नाम भी बता दिया है। समझ, जो एक एक्टर है ना उनका दूसरा नाम अब्राहम था, अब्राहम। ओके, गुड वन देयर।
1: दिलीप कुमार थी बात की, मुझे लगता राजकुमार है, राजकुमार।
0: नहीं, पहले अपने अपने आंसर को श्योर कर लें, ये नहीं आंसर करेक्ट। सना आपने कहा, बिपिन गुप्ता नो, लखबीर आपने कहा, ओम प्रकाश एंड महमूद नो, रीना आपने कहा है कि अभी भट्टाचार्य है, नो, दिस वाज नॉट अभी भट्टाचार्य, उनका नाम असल में मुझे लगता है अब्राहम था।
2: All the favorite songs you grew up listening to. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। And the premier mix of today. Yeah, share khul gaye. East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: This is Dr. Jamil Frankenstein. He has made a time machine.
4: It's time to travel to the future so I can give my children money.
3: Okay, let's see if that would work.
4: To the future we go. Oh no!
3: Look, forget a time machine. Britam has a way for you to secure your children's future with Britam Whole Life Plan. With flexible payments, tax-free benefits, and your cover grows by 3% every year. Join us as we tell you more and reward you with 3,000 Kenya shillings. That's in the breakfast, Ramathan Jamil and Britam Whole Life Plan.
4: Don't forget to cheer.

मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुत्तमा हंसी, कहां है दिल किसे पता, कहां हूं मैं खबर नहीं, मैं खो गया।

दिल कह तो दूं झूम के प्यार से जुल्फ को चूम के, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, मैं खो गया यही।

और सेवन पहला जो क्लिप था उसमें माला सिन्हा और बिस्वाजीत, दूसरे में मेजर जो थे वो दिलीप कुमार थे, उनकी आवाज थी। अब जो तीसरा मैंने आपको सुनाया है उसमें जॉनी वॉकर कहा है लखबीर ने, नहीं सोनल मोदा आपने बता दिया कि किसका नाम अब्राहम था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि फीमेल कौन है, नो नॉट फीमेल, द सेकंड वन वो कौन है, नीला शेत, बिल्कुल करेक्ट, दोनों आंसर्स आपने दिए हैं, वेल डन। अमीर अली राना, एज यूजुअल दिस वीक शो वॉज रियली आउटस्टैंडिंग एक्सेप्ट द टू डेज यू डिडंट कम, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। आपको भी अमीर अली राना, हैव अ फैंटास्टिक वन। और इट वॉज सना काना, देवन वर्मा और डेविड थे, समिन वो डेविड कहते हैं, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की, जब उसकी उम्मीदें ऊपर जाते कहते नहीं आई, कमाल का था वो डायलॉग, डेविड कह रहे हैं डेविड। पिछले दिनों अश्विन दोषी ने उनका जिक्र किया था तो मैंने सोचा क्यों ना। मंजुला विश्वकर्मा, बिल्कुल करेक्ट, दोनों डेविड और देवन वर्मा। समिन यहाँ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज और हमारा फीचर ख़त्म, पर एक गाना।

और आपकी जिंदगी गुलशन बनी रहे ये है हमारी दुआ सर मैं चलती हूं अब इंशाल्लाह मुलाकात हमारी और आपकी सोमवार के दिन होगी इंतजार कीजिएगा आगे निमरत कौर आफ्टरनून अफेयर में समय दो गाने आपके लिए जो छोड़े हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो पहला है पुराना है गोल्डन पीरियड का हमारे बेस्ट गानों में से एक वो सुनिए और आनंद लीजिएगा हैव अ गुड वन

निधन की सूचना नहायत अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि जनाब शाहिद नुशीद मोहम्मद सलाम इंतकाल फरमा गए हैं। आप शबीना हाशम के शौहर थे, तानिया सिमरन अनम रुमीस और जाहिद के वालिद मोहतरम थे। आप मरहूम मोहम्मद सलाम कोडू और मरहूमा बदरुल निसा शमो के बेटे थे। आप साइका नायरा और सीमा के भाई थे। मरहूम की सलातुल जनाजा आज दिन 1 बजे सलातुल जुमा के बाद नूर मस्जिद साउथ सी में अदा की जाएगी, जिसके बाद मैयत को करिया को कब्रस्तान नैरोबी में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। नहायत अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि जनाब शाहिद नुशीद मोहम्मद सलाम वफात पा गए हैं। ईस्ट एफएम की ओर से विनम्र श्रद्धा।

0: Modern Bollywood hits and ballads to sing along with.
1: East FM,
0: Kenya's premier
1: Asian mix.
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए,

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ये तो इंडिया में बड़ी कॉमन चीज है कि आगे मकान पीछे दुकान, ये सही है क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं, पीछे खाना पीना खाओ, आगे जाके धंधा करो, फिर जाके पीछे जाके चिल मारो, बीच में ब्रेक ले लो, लंच ब्रेक। इंडिया की अगर आप इंटीरियर्स में जाएंगे आज भी दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन वेयर पीपल जस्ट मेक देयर लिटिल लिटिल शॉप्स एंड बिजनेसेस आउटसाइड एंड देन दे हैव दिस लिटिल हाउस एट द बैक एंड यू नो एज मच एज वी फील दैट यार इनकी क्या लाइफ होगी ना, बट दे एक्चुअली लिव अ बेटर लाइफ, दे लिव अ सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ, ज्यादा कोई जिंदगी की हाई मारी नहीं है, आराम आराम से अपनी जिंदगी निकालते हैं, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा खाते हैं और उसी में खुश रहते हैं।
1: Facts. Did you know this?
0: Right, so on facts, did you know I have something very interesting about Earth and space strangeness, okay? So today I was looking for a little, you know, stuff to share with you and I'm like, okay, थोड़ा हम लोग ने ये हफ्ते में चाय की बात कर ली, कल चाय डे मना के ब्रेन की बात कर ली, actually 2 days. So I said, today let me pick up something else. So did you know there's a place on Earth where it literally rains fish? Have you ever

0: इट्स अ ब्रांड न्यू रिलीज टुडे चांद मेरा दिल. इंस्टाग्राम पे तो मैंने ऐसे बड़े बड़े स्टार्स देखे हैं फिल्म के लिए. धर्मा की फिल्म है ये, खुद को ही स्टार दे देंगे. मैं ही स्टार हूँ और मैं सबको स्टार बनाता हूँ, करण जौहर. बट द फिल्म लुक्स इंटरेस्टिंग, ऐसे बुरा नहीं है. इनफैक्ट ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श, बड़े जाने माने क्रिटिक्स हैं, उन्होंने फिल्म को 3.5 स्टार दिए, हाईलाइटिंग द विन्स एंड परफॉर्मेंसेज ऑफ द एक्टर्स. एंड देन सम पब्लिकेशंस हैव गिवन इट नेगेटिव वर्डिक्ट, सेइंग दैट इट्स अ बिट मेसी, फिल्म्स अनइवन पेसिंग अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन सम एम्प्टी मेलोड्रामा as well the some of the critics have said. So Lakshy jo RF play kar rahe hain, Ananya Pandey's Chandni, unki acting ki kafi tareef ho rahi hai. And Fahim Abdullah, to obviously he's like the new Arijit of Bollywood. His songs, especially this title song, is doing very well. So it's not bad, it's like a good watch. Even NDTV I saw the review is not too bad. It's not a typical love story apparently, and it has a lot of romance, drama, unexpected twists, and that's a good, because it is not your regular love story. He said on NDTV that several terrific emotional moments and soulful music are its strength. Okay, so that means it's a decent watch. Chand Mera Dil, chale movie date pe.
1: The 2026 IPL update brought to you by Juracoat.
0: यहाँ हमारा अपना ही मूवी चल रही है और आज मैच है सनराइजर्स हैदराबाद एंड आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि मुझे तो विनर लग रहे हैं इस सीजन के, बट यू नेवर नो, इट्स स्पोर्ट्स राइट. आरसीबी की फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है, मस्त से. एनीवेज, दे हैव वन द टॉस, दे आर बोलिंग सनराइजर्स हैदराबाद, दे आर बैटिंग, दे हैव मेड 57 रन्स अप टिल नाउ फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट इन 5.3 ओवर्स. द करंट रन रेट इज 10.36.
1: Juracoat Real Rock, the premium textured exterior finish that stands strong against sun, rain and dust, holding the crease and keeps your walls standing tall over and over. Visit Juracoat.com. Juracoat. Ask the experts.
2: East FM. You have been to great concerts. You have not been to this one. Grammy Award winners, Karen White, Kirk Whalum, live in Nairobi.

0: मैं इसी फिल्म की बात कर रही थी, विवेक ओबेरॉय और करीना कपूर की. आई कैन नॉट रिमेम्बर द नेम. व्हाट इज रॉन्ग? यस, युवा. ओ माय गॉड, यस, युवा में वो साथ नजर आए थे. एक्चुअली दे वर आल्सो टुगेदर इन ओमकार, आई थिंक सो. I'm not too sure. Yeah, Omkara as well. And in Kurban in 2009. But Yuva, I think their work was really appreciated a lot together on screen. Yeah, so coming back to Vivek Oberoi, I was talking earlier that he's done some good movies, you know, some really good films. And then I don't know what happened to his choice of work. But it is what it is. Right now, it's time for...
1: Three things in 5 seconds. 5 seconds rule on the rush.
0: तो होता है कभी कभी, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी टेंड टू रिमेंबर सम थिंग्स लाइक इवन टाइनीस्ट लिटिल डिटेल्स अबाउट सम वन, सम नेम, सम प्लेस, एंड देन वील रिमेंबर इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. यू नो, दिस इज रिलेटेड टू योर ब्रेन एंड हाउ इट फंक्शंस, लाइक योर चाइल्डहुड मेमोरीज फॉर एग्जाम्पल. देर सो मच दैट हैपन्स, यू नो, फ्रॉम द टाइम यू अंडरस्टैंड लाइफ एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. देर इज कपल ऑफ थिंग्स यू एब्सोल्युटली फॉरगेट, यू डोंट रिमेंबर, बट सम थिंग्स विल स्टे एच्ड इन योर माइंड फ्रॉम द टाइम टिल द टाइम आई think you die. ठीक है, so coming back to human behavior and human brain, let's come back to the behavior part. That three things, okay? So name three things you pretend to understand but you actually don't. आप कहते हैं हाँ भाई, ऐसे दिखाते हैं सबको कि भाई हमारे समझ में आ रहा है पर आता नहीं है. So tell me, okay? Tell me about yourself. Three things that you pretend to understand but you actually don't.

All right, so the question for today on 5 seconds rule is three things, okay? You pretend to understand, but you actually don't. दुनिया को दिखाने के लिए हम pretend करते हैं, but नहीं समझ में आता. तो नरेंद्र कह रहे हैं कि आपकी बीवी का गुस्सा, your manager's logics and your son's demands, you pretend to understand, but you don't. By the way, chai ke liye kal shukriya Narendra. Thank you so much. And if you ask me, I think three things I pretend to understand is certain people. I'll show them. Haan, main unhe samajhti, but nahin samajhi mein aate mujhe wo. Mere upar se jata hai. Like, kya sample hai yaar? Like, humare India mein aise hi kehte hain, you know. So, that could be one thing. I pretend to understand certain people, but I actually don't. I pretend to understand politics, but I don't. I totally don't like politics. Anything related to politics, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे उसके बारे में कुछ समझ में भी नहीं आता और मैं pretend करती हूँ क्योंकि करना पड़ता है कभी कभी. But that is one thing. And I think I would pretend to understand the logic behind Western food as well. You know, when people say, ये सारी चीज़ें डाल के आप ऐसे डिश बना रहे हैं. Oh my God, you know, quiche and quinoa and ये मेरे कुछ समझ में नहीं आता. मैं pretend करती हूँ, हाँ हाँ हाँ सही बात है यार, क्या डिश है, पर मेरे नहीं समझ में आता. मैं हूँ देसी, मुझे सिंपल दाल चावल समझ में आता है एंड मैं वही ठीक हूँ. Let's go.

हाँ जी, ये तो बड़ी पुरानी कहावत है जो हमेशा मैं गाने के बाद बोलती हूँ, क्योंकि फिट बैठता है आजकल के ज़माने पे कि आप करो तो रामलीला है और हम करें तो रासलीला। ये तो दुनिया का उसूल ही है। दूसरों पर उंगली उठाना आसान है, नॉट रियलाइजिंग द अदर फिंगर्स आर ऑल फोकसिंग टूवर्ड्स यू, बट इट इज़ ओके, वेयर इज़ ओके। ओके, सो थ्री थिंग्स यू प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड बट यू एक्चुअली डोंट। ओके, एंड आई हैव गॉट वेरी interesting answers and let's see. Okay. So Mustafa, who's tuned in all the way from Niagara Falls, saying everyone pretends to understand Salman but they don't. हाँ, ये बात तो सही है सलमान। देखो ये ना, तुमने बड़ी पर्सनल बात कर दी मुस्तफ़ा। यू नो हाउ इट इज़ फॉर मी व्हेन इट कम्स टू सलमान। मैं तो उसको अंडरस्टैंड भी करती हूँ, मैं उससे तो प्यार भी करती हूँ ना, तो अंडरस्टैंडिंग प्यार गोज हैंड इन हैंड। बट वेरी वेल सेड। ओके, एंड देन आई हैव गॉट इब्राहिम हू सेइंग थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड बट प्रिटेंड टू नो इज सम वीडियो दे राइट POV एंड द टॉपिक बट डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग। सो POV मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। Gen Z language, you know, clock it. My daughter has taught me how to say clock it. Okay. Then when people go crazy about a star, they yell and call out their name and hug, and they're just normal people like us. That I get you. And the third one, when guest sees food, they ignore the food, but they don't warn. But after some time, they eat. That is so true. You know, like घर में आते मेहमान खाएंगे जरूर, पर कितना फोर्स करना, स्पेशली इंडिया में तो बहुत होता है, खाएंगे ना, हमने आपके लिए बनाया खाए, नहीं नहीं नहीं क्या जरूरत थी इसकी, फिर ऐसे खा के जाएंगे, प्लेट भी खा जाएंगे।

0: हमारे एक लिसनर हैं, वो काफी दिन से ट्यून नहीं की. हनान, आर यू लिसनिंग? समटाइम्स शी इज लिसनिंग बट शी डजंट मैसेज. सो शी सेज व्हेनेवर शी लिसंस टू दिस सॉन्ग शी लिसंस टू समहानी. दे सेड जब फोन बंद होता है तब. दैट्स ट्रू. ओके, सो रसीला, यू आर सेइंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, शेयर, स्टॉक मार्केट्स एंड स्टिल प्रिटेंड एंड लिसन व्हेन एक्सप्लेन टू बी. दे आर जस्ट टॉकिंग एंड दे आर लाइक हाँ हाँ या करेक्ट करेक्ट, और समझ में नहीं आता. ट्रस्ट मी, आई एम लाइक यू. मुझे नंबर से रिलेटेड कोई चीज समझ में नहीं आती. मैथ्स तो मुझे स्कूल में आई यूज टू हेट इट एंड आई स्टिल हेट इट, और नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज हो मेरे ऊपर से जाती है. सो आई गेट यू. एंड यस, नरेंद्र सिंह, नायरोबी मनेनो इज लाइक बारिश में ट्रैफिक. इट्स लाइक यू प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड बट यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. दैट इज वेरी वेरी ट्रू. एंड देन सिमरन इज सेइंग आई हेट पॉलिटिक्स इज वेल, जीने नहीं देते किसी तरफ. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है. दुनिया भर ने, पूरे पॉलिटिक्स ने ड्रामा मचा के रखा हुआ है. महेश इज सेइंग दैट टैक्सेस, स्टॉक मार्केट एंड फाइन आर्ट, you pretend to understand but you don't. Join the gang with me and Rasila, come join us. Okay, and Ibrahim has added one more thing. When stars like Ananya Pandey say they have struggled to get where they have reached, but what struggle, flop pe flop movies. Chalo, let's see Chand Mera Dil kaise fare karta hai at the box office. Yes, she is a star daughter, but Ananya, I feel jitne naye lot ke actors hain, mujhe usme thodi wo theek lagti, thodi si acting wise. Looks wise I really can't say much. Aajkal ki waise bhi actresses sari एक जैसी लगती है, कोई भी अलग कोई नहीं, सारी दुबली पतली लंबी ऐसी. बट एक्टिंग थोड़ी सी उसकी ठीक ठाक है कंपेयर टू अदर न्यू एक्टर्स. वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद मी. एंड फॉर नाउ वी आर गेटिंग इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो. कीप इट ईस्ट एफएम.
1: ईस्ट एफएम विद न्यूज फ्रॉम केन्या, एशिया एंड अराउंड द वर्ल्ड. दिस इज ईस्ट एफएम न्यूज प्रेजेंटेड बाय ग्लोरिया मुसिम्बे.
2: Kenya has not recorded any confirmed Ebola case as of May 21, 2026. Despite outbreaks reported in neighboring Uganda and DRC, Health Cabinet Secretary Aden Duale has assured. However, CS Duale warned that the country remains at high risk of importing cases due to cross-border movement and regional travel. CS Duale says the government has significantly stepped up national preparedness and response measures, including surveillance and public health interventions, to protect Kenyans from a possible outbreak.
3: We have done the activation of incident management system to coordinate national preparedness and response activities in collaboration with counties and partners.
2: National Assembly Speaker Moses Wetangula has announced uncompromising support for ODM party leader Oburu Odinga. Speaking at Nyando MP Jared Okello's mother burial service, Wetangula rejected complaints from factional critics agitating against broad-based government. He reminded citizens that nobody should feel like a stranger because the coalition has unified all Kenyans. Treasury Cabinet Secretary John Mbadi has warned that anyone dividing ODM is an enemy of Raila Odinga's legacy. Speaking in Nyando, Kisumu County, during the burial of MP Jared Okello's mother, the former ODM chairperson urged total support for current party leaders in order to position the region to clinch the presidency in 2032.
4: Nyanza and Western, tutaka chini after 2027, this region must also produce a president. It cannot be that 65 years after independence, there are only two communities.
2: Members of the transport sector have welcomed President William Ruto's declarations on matatu graffiti and insurance reforms. However, they maintain that while these policy shifts are positive, they do not go far enough. They are now urging the government to urgently address high fuel prices, which continue to strain their operations. Nairobi Governor Johnson Sakaja has emerged as the leading contender in the City Hall race, according to a new Darubini poll released today. Sakaja secured 48% support, ahead of Embakasi North MP James Gakuyu at 28% and Embu East MP Babu Owino at 17%. Businesswoman Agnes Kagure received 9% while 3% remained undecided. The poll links Sakaja's popularity to county projects, youth programs and Nairobi CBD refurbishment efforts as political competition intensifies ahead of the next general election. Nyeri Polytechnic has been closed indefinitely, with students ordered to vacate the campus following unrest linked to a dispute over student elections. Authorities took the decision after tensions escalated on campus, disrupting normal learning activities after police lobbed tear gas to disperse protesting students in the institute. That's the news update on East FM.
1: And that's the news from around the world on East FM. Another hour of more fun and great music. The Rush with Niloufar.
0: So Sonal is asking me, kya surprise hai, kya surprise hai, tum bata nahi rahi ho, batao, batao. Isi ko to kehte hai surprise. Abhi bata dungi to surprise kaise rahega. To aane wale kuch dino mein aapko surprise milne wala hai East FM pe. Thoda kripya karke vistar... वो देयर अ फोन लाइन इन इंडिया क्या आप प्रतीक्षा करिए आप कतार में हैं समथिंग लाइक दैट नो इट्स नॉट लाइक दैट इट्स अ सरप्राइज सो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग यू गोना लव दिस सरप्राइज या आई थिंक यू विल इंशाल्लाह फॉर नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय सम ग्रेट म्यूजिक एज ऑलवेज राइट अप टिल 7 p.m. दिस इज द रश विद Niloufar दिस आवर एज ऑलवेज ट्रैफिक अपडेट आईपीएल अपडेट उसके साथ साथ अच्छे अच्छे गाने नॉट फॉरगेटिंग वी हैव टू गेम्स इन दिस hour one word only and true or not

0: That's playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix. This is the City Lights with Vishal. And ek aaj aisa topic hai, bhari sawal, jaise main hamesha bolta hu, that you know what, studying abroad, theek hai, I think it's a very bahut sare armaan leke jaate hain log when they choose to study abroad. And so studying abroad, it's a dream, it's pressure, and it's reality at the same time. So everyone sees the airport photos, nobody sees the microwave dinners and silent tears at 2 a.m. Most students imagine studying abroad as freedom, success, luxury, and soft life. But once the excitement fades, reality kicks in. Expensive living, loneliness, culture shock, and the pressure to succeed. You land in a new country thinking life will look like a Netflix series. First week, snow pictures, campus selfies, new friends. By week 3, you're converting every prize back to shillings and skipping meals because rent just humbled you. Studying abroad teaches you 2 degrees at once, your course and survival. So ये टॉपिक जो आज है, बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए. एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑब्वियसली दैट माँ बाप के अरमान भी होते हैं कि हमारा बच्चा सक्सीड करे, अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाए, एंड दैट इज़ व्हाई दे सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. बट उधर जाके एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ चेंजेस, और समथिंग्स चेंज, समथिंग्स डोंट चेंज. बट हाउ डू यू डील विद दैट प्रेशर, बिकॉज तुम्हें उधर भेजा गया है इतने सारे पैसे खर्च करके फॉर यू टू मेक अ करियर. ये टॉपिक पे आज ज़्यादा तो चलो हम मैं ही आई एम गोना शेयर माई थाट्स विद यू, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. कुछ लोग आई नो, कुछ पेरेंट्स होंगे जो सुन रहे होंगे अभी मेरे को, कुछ बच्चे होंगे हु माइट बी लिसनिंग एंड थिंकिंग दैट यू नो वॉट, या वी सर्वाइव दिस एंड वी बिकम डॉक्टर्स, वी बिकम इंजीनियर्स, वी बिकम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, वी बिकम यू नो, वी सक्सीडेड इन लाइफ बिकॉज ऑफ स्टडिंग अब्रॉड एंड गेटिंग अवर डिग्रीज. सो आज का टॉपिक है, आप मेरे को बताओ कि वॉट इज़ योर ओपिनियन, आपका क्या ख्याल है. यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन 0701 106 106.
1: All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: जैसे मैंने बोला सोनल यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, सो हैज संगीता, यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर एज वेल. अगेंस्ट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.

में बड़े काम की चीज है, मतलब सो तो स्माइल से, उठो तो स्माइल से, अंदर हो तो स्माइल से, बाहर आओ तो स्माइल से। जिसकी रिलेशनशिप नहीं हुई ना, उसने लाइफ जी नहीं पाई।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: No one plays more of your Bollywood favorites.
2: गुलाबी साड़ियाँ नी लाली लाल लाल।
3: ओ माही कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा।
1: Buttie FM, Kenya's premier Asian mix.